0: गहूँ प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इंश्योरेंस के अभिकर्ता बनो।
1: प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड।
2: समुदाय का लागी समुदाय को आवाज रेडियो धादिंग 106 मेगाहर्ट्ज।

यसैगरी हामी शिवम सिमेन्टले पनि क्वालिटी को मामला में नो कम्प्रोमाइज भन्ने हाम्रो वाचा पूरा गर्दै फेरि ठाडो पारिरहेका छौं। सदा सर्वदा शिवम सिमेन्ट, क्वालिटी को मामला में नो कम्प्रोमाइज।

0: कहूँ प्रभु माँ लक्ष्मी लाइफ इंश्योरेंस के अभिकर्ता बनो
1: प्रभु माँ लक्ष्मी लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड।
2: समुदायका लागि समुदायको आवाज रेडियो धादिङ 106 मेगाहर्ज।

0: एक्सट्रीम इमेजिंग टाइम चेक अहिले ठीक 7 बजेको छ। एक्सट्रीम इमेजिंग टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
1: रेडियो धारी समय संकेत
2: अहिले साँझको 7 बज्यो।
3: शिवम सिमेंट क्वालिटी को मामला में नो कम्प्रोमाइज भन्दै सिर ठाड़ो पारिरहेका छौं सदा सर्वदा।